देवते ने हरनाक्ष की कारवा लिखा तो नारद मुनि दे हवाले कर देता है। क्या तू नाल लेके नारद मुनि अपने आश्रम आ गए। आश्रम भी ओ

अपना दुख भुल गई, सारा समा परमेश्वर का नाम जप के बताने लगी। ये जो नाम जपदी है, परमेश्वर दिया कथा कहानियां सुन दी है, ओदा असर एदे गर्भ विच है, पोस्ते हो रहे है। क्योंकि कहंदे ने जो मां खावे ओदा असर बच्चे ते हुंदा है, ते जैसी मां दी बिरती होवे जहो जिहा सुने ओहो जिहा असर होण वाले बच्चे ते हुंदा है। हुण ए नाम जपदी नाम सुनदी है, उस नाम दा असर

पैदा होया है वो मेरा भगत है। प्रहलाद ने अपने पिता का नाम जपना नहीं, एक घर विच लड़ाई शुरू हो जानी ते हौली हौली ऐसे घर की लड़ाई ने हरनाक्ष का नाश करा देना है ते दुनिया नू हरनाक्ष के मरण दे नाल ही

कहो जाए, प्रहलाद बुलाए वेद ताए। संडे मरके ने जदु शिकायत की थी, ऐ राजन तेरा अपना लड़का तेरा नाम नहीं जपदा। ताओ से वक्त

पानी विच डोब के मार दियो। छपाइया ने प्रहलाद नूं फड़िया, हाथ पैर बन के उची पहाड़ी ते लै गए। बड़ी डूंगी नदी जिन्हों देख के भी डर लगता सी, छोटे जे बच्चे प्रहलाद नूं चुक के नदी विच सुट दिता।

प्रहलाद किनारे दे लग गए। हरनागश नु पता लगा कि मेरा लड़का प्रहलाद डुबिया नहीं। समझ ना आई हाले भी कि जिदी रखिया परमेश्वर करे उन्हू कौन मार सकता है। पर फिर प्रहलाद नु बुला लिया ते गुस्से नाल कहा, तू राम नाम जपना बंद कर, मेरा नाम जप, नहीं ते अग विच साड़ के मार देंगा।

अपने सामने खड़ा करके कहने लगा, प्रहलाद आखिरी मौके राम नाम छड़, मेरा नाम जप, नहीं ते तलवार दे नाल तेरा सिर वट देंगा।

जेते नू अपने रब दे भरोसा है। इस तत्ते थम नू जफी मार जेड़ा अग दी तरह सड़दा पे है। ते नाले हरनाकश ने तलवार खिंच ली, दस मैनू

सत्ता थम देख के ते भगवान ने गिड़ी दा रूप धार के थम ते तुरना शुरू कर दिता। पर बाणी कहंदी कि प्रहलाद डोलिया नहीं, क्योंकि भगत कदी डोलदे नहीं।

भगवान ने हरना कृष्ण अपनी बाहों में फड़ लिया है। कमरे की दलीज विच आके भगवान बैठ गए। एक लत कमरे के अंदर, एक लत कमरे के बाहर रखी। हरना कृष्ण अपने पट्टा ते

ना मेरे हाथ विच कोई हथियार है। जद सारे वर परमेश्वर ने गनाए ते नाले के देख ले, ना मैं औरत हां ना आदमी, सारे वर पूरे।

जिन्नी वर में मंगे सन सारे पूरे ने। परमेश्वर बड़ा बेअंत है, गुरु हमेशा चेले कोलो एक गुण वद रखदा है। की पता है चेला कदू हंकार विच आके ते मुकाबले ते बह जावे, ते जेड़ा चेला मुकाबले ते बैठे।

भगत कबीर सब नाल भी होया है। हिंदुस्तान दा बादशाह सिकंदर लोधी उसनु पता लगा कि कबीर मुसलमान है, पर मुसलमान हो के ए राम राम करता है। कुछ लोका ने कान भरे, सिकंदर लोधी ने भगत कबीर नु अपने

सिकंदर लोदी दे सामने हुए सिकंदर लोदी ने कहा, ऐ कबीर तू मुसलमान है तू सुन्नत नहीं कराई, सुन्नत करा ते राम राम छड़।

पर मैं बड़ा हैरान होया इन्हां लोकां दी अकल ते। एक पास कहंदे ने गंगा मां है पापां दा नाश करदी, ते उसे गंगा मां विच ए मैनूं

के नाम तो बिना छुटकारा नहीं, नाम तो बिना कोई बाँह नहीं फड़न वाला, नाम तो बिना कोई वस्तु नाद नहीं जान वाली। इसलिए है कलगियां वाले पातशाह, हे दुष्ट दमन दाता, हे महान तपस्वी, हेमकुंड दे निवासी सतगुरु, सानू जोड़ लै नाम दे नाल, सास ग्रास तेरा सिमरन करके, श्वास सफले करके, मुख उजला करके तेरे चरणा विच जाई। जो गुरु के लाल श्री हेमकुंड साहब श्रद्धा और भावना दे नाल नाम जपदियां सेवा सिमरन परपकार करदियां जांदे हन, इस रस दा इस स्वाद दा उन्हां नूं ही पता है। निरंकार आप ही अपनी शक्ति बख्श के ऐसे कठिन रस्ते तो आप सहायता करके ले जांदा, औखी घाटी बिखड़ा पेंडा मेरे अंग संग होए सहायगी। जो सिमरन करदियां उथे पहुंचदे हन भाई, उन्हां दे चेहरियां दे रंग भी तब्दील होंदे हन। कोई नाम दा नूर चढ़िया हुंदा, नाम दी लाली हुंदी है उन्हां दे मस्तक। ते फिर जी करदा है कि होर जपां, जप जप के समा बितावां। इसलिए ए अरदास करदे हन।

0: गुरु दा ते फिर भाव उपजेगा, प्यार उपजेगा, ते प्यार पवेगा, ते फिर मिलाप दी घड़ी भी आवेगी। भाई एवें नहीं आउनी, उच्चारण करो श्री
1: वाहिगुरु।
0: इसलिए हजूर कहंदे न, ओ विचारी बूंद क्या करे जिसनु हुक्म होया। विचारी बूंद ने कितने जतन कीते नदी दे नाल मिलके, रात दिन बे आराम होके किते आराम नहीं कीता। मुद्दतां दे बाद समुंदर विच जा मिली अपने प्यारे नू, ते प्यारे समुंदर ने हुक्म कीता भई हुण हवार बन के बदल बन के जाके फिर वसो। तां हुण विचारी बूंद क्या करेगी, मेघे नू फुरमान होया बरसो कृपा दा, ते फिर वसेगी फिर कदों मिलेगी। ए मिलाप दी घड़ी सी ना, जदों धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने सुनिया दिता सी अकाल पुरख वाहिगुरु नू। हे अकाल पुरख, आख्या मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोब रजाइयां दा ओढ़न नाग निवासां दे रहना, सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना, है ना दर्शना दी भुख। आख्या तेरे दर्शना तो बिना पता ही मेरा की हाल है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि बिंग कसाइयां दा आ कसाई लोग जेड़े हुंदे हन चमड़ा महंगा वेचण लई अध मोया पशु नूं करके सुट देंदे हन, ते सारी रात ओ जदों तड़फदा है तां उदे शरीर दे चमड़े दी खल बहुत पतली बनदी है, कुर्म बन जांदा है, ते ओ उसदी कीमत कई गुणा वध जांदी है। इसलिए ओ बिंग कसाइयां दा क्या। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहंदे हन, हे निरंकार, हे वाहिगुरु, तेरे बिना जितना हजार पशुआं नूं दुख हुंदा है ना, तेरे बिना मैनूं इतना दुख है, विछोड़े दा दुख। विछोड़ा सुने दुख, बिन दिथे मरियोद, बाज प्यारे आपने ए बिरही ना देवो। इसलिए छूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्तर जगा, पट खेड़ियां दा रहना, राज भाग दुनिया दे सुखा, दुनिया दे सुख मेरे लिए बलदी पट्ठी दी दियाईयां, जे तू नहीं मिलिया मैनू, जे तेरे दीदार नहीं होए तां फिर दुनिया दे सुख मेरे लिए बलदी पट्ठी दी न्याई हन। ए भाई प्यार वालियां दी खेड है। भाई साहब नंद लाल जी कहंदे ने, जे कर पुछे हाल असाडा बैठ घड़ी गुर मेरे, जे कर साडा हाल पुछे तां फिर असी तां यही कहांगे कि तेरे दर्शना तो बिना साडा कोई जीवन नहीं है। इसलिए कलगियां वाले आ साइयां सानू नाम नाल जोड़।

चिड़ियों से मैं बाज तुड़वाऊं, 1,25,000 से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इसका मतलब कि अकाल पुरख वल्लों

पवित्र खून ओ पवित्र केसर मथे ते लगा दिता, जिसनू कोई मुड़के पूंज नहीं सकया। एक कुर्बानी है

को आके बिना शस्त्र जे आप केस धरे हुए होण ते शस्त्र ना होवे ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सिखो भेड़ बकरी तो वध तुसी कुछ नहीं। इसलिए तुहानू भेड़ बकरिया नहीं मैं बनाया, मैं तुहानू सिंह बनाया शेर। और शेर पता कौन हुंदा? शेर मैदान जंग विच उत्तों छाल मार के आउंदा, छाल मार के। मैं तुहानू दसदा दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साड़न लई 12,000 की टोली आई, 12,000 की, 4,000 ते आया इधर फतेहपुरी वालों, ते 4,000 आया लाल किले वालों, ते 4,000 सामने उस स्टेशन वालों आया, ते जेड़े सी ना उन्होंने खिलारे हुए बंदूक लैके वह भज गए, जेड़े दुष्टां की फौज सी वह भज गई। ते दो चार साढ़े सिख बेचारे लागे कोतवाली, उन्होंने पिस्तौल ते उन्होंने रात ही खोले से ते डंडे इन्हें हाथ फड़ाते से, वह डंडे लैके शीशगंज अंदर आन बड़े। असी डे सा कीर्तन कर बाबे नहीं साढ़े राम जपो जी ऐसे ऐसे हां जी, ये राम ही डे सी जपण। उन्हें सिखा आण के कहा भाई खालसा जी हुण राम जपना छड़ो ते खंडे खड़काओ, 5 मिंट तुसी होर चुप कीते रहे ते तुहानू इन्हां ने उत्ते ही आण के फड़ के जीवंदे साड़ देना, धीआं तुहाडीआं खिच के लै जाणगीआं, आ गोलकां गलकां लुट के गुरु साहब की बेदबी हो जानी। 5 मिंट केवल रहिंदे, जे कुछ कर सकते तो कर लो। यह साडे सिंह साहब बहादुर महाराज नूं नमस्कार बख्शण। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने थापी दिती और इन्हां कोल शस्त्र सी जिहड़ा सानू बाबा महाराज बाबा जरनैल सिंह जी ने कीर्तन च भेटा दिता सी। मेरी बेनती सुन लो मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने थापी दी, इन्हों के अंदर वास किया और शस्त्र कढ़िया, 3-4 सिंह होर सी वह इन्हों के नाल हो गए और इन्होंने छाल मार के बबर शेर जिमें बबर शेर के नजारे उथे मैं वेखे। गुरु गोबिंद सिंह की बाणी मैं पढ़ता हूं, पाप समूह बिलासन को कल की अवतार कहावेंगे, तुरकच्छ तुरंग स्पच बटो करकार कृपाण कंपावेंगे, निक्षे जिम केवर पर्वत ते ता सोर दिवाले पावेंगे, फल पाल पयाए संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। ओ मैं सुनिया एक तुक, निक्षे जिम केवर पर्वत ते, केवर का मतलब बब्बर शेर है, बब्बर शेर जो भुखा हुंदा है वह जदों फिर पर्वत तो पवक मार के छाल मार के जो मैदान च आउंदा है उन्हें फिर जो है ना वो पता की लिखे वो जो आप पढ़ते हैं गुरु नानक साहब का, हां जी सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चान होवा, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। अगे की है सिंह बुकते सिंह फिर गजे ते की होया मिर्गावली पन्नी जाए, मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर पर हुआ। ऐ बाबे ने छाल मार के शीशा के पौड़िया तो तलवार इतने फड़ ली ते जकारे छड़ दे पंज पै पंज के वो पंज सत पिछे बेचारे मेरे वर्गे वो भी मगन मगन भजी आन। जब उन्हें देखा गुस्टा तो ये ते आ गए, तलवार इतने रखी बाबे जरनैल सिंह वाली, वो 4 उधार सी ना फतेहपुरी वाला भज उठा, 10-15 दम टुट गए, 50 सत्ता गोगे गोडे टुट गए। है जी जब भज उठे नाले ऐ देखने वाले भजन तो फिर एक उठे खलो गए। इन्हें आख्या गल सुनो असी गुरु गोबिंद सिंह हां, ना असी बीबी मारते हैं, ना असी बुढ़े मारते हैं, ना असी बच्चे मारते हैं, ना असी भजदे मारते, असी भजदे नहीं मारते, तुसी प्यो दे पुत्तो खड़ो जाओ नहीं तो असी इधर जाने जड़े आ आउंदे ने उन्हां नूं छड्ड के लाल किले वाल भज उठे, वह पहला ही अगे भज उठे। है जी 12,000 दुष्ट ऐ सारे बाबा जी ने, मैं तो कहना महाराज इन्होंने बढ़िया सुना के फिर मैं समाप्ति करनी है क्योंकि तुम बहुत कुछ सुन रहे हो। 4वें दीवान लगा रज गए होवोगे, श्रवण करो गुरु गोबिंद सिंह की कहते

ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तेहु लोग परगासे देखत दर्श पटिक ब्रह्म पजते दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभत आल समूह ज्यो कुसुम सुबासे विद्यमान।

तू सतगुरु चौ जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरों तुर आद जुगा।